0: तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: Big 106.2, The Beat of Bollywood.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: नमस्ते बहनों भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ।
1: सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।
2: Forget coffee, chai. He has got your morning kick. UAE's number one way to rise and shine. The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. Brought to you by Fly Dubai and Jetour UAE, part of Elite Group Holding.
3: गुड मॉर्निंग, इट्स पास 6 एएम ऑन दिस जुमारात थर्सडे की सुबह। इट्स द थर्ड डे ऑफ द लंबी चौड़ी ईद की छुट्टियां। छुट्टी और नॉट, दिस इज द परफेक्ट वे टू स्टार्ट योर डे। इट्स कॉल्ड द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड। इस शो में वो सब कुछ है जो आपकी बैटरीज रिचार्ज करता है मंडे टू फ्राइडे। There is super hit songs, some amazing prizes for you to win, and दुनिया भर की गप्पे शप्पे तो हम लोग मारेंगे। Keep it locked to Big 106.2, a part of the Funny Asia Network.

0: ए बुड्ढे, ए बुड्ढे।
1: नमस्ते।
0: पहले आप आदर कीजिए, आप गुस्सा नहीं होंगे।
1: भला मैं क्यों गुस्सा होने लगा? आप बात बताइए।
0: मैं बात तो बता देती लेकिन मुझे डर है कि आपको गुस्सा आ जाएगा।
1: नहीं नहीं नहीं, आप तो खामखा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
0: गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा आ रहा है देखिए।
1: ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
2: The Big Breakfast brought to you by Fly Dubai. One flight, endless stories. Now listen to your favorite songs on repeat without any interruption. Download the Big Fan app for unlimited song selection. Available on iOS and Android.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Discover the Freedom plan that suits you best. Freedom. Your choice. Your rules. Visit eand.ae to learn more. T's and C's apply. E&. Go for more.
1: पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

0: मिला नहीं, मिला नहीं। और जमीन भाई पसारे बोल रही थी कि हाउस मां कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लगा था जैसे प्रिया के पैर का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।
1: बिग 106.2

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: थिंक कार रेंटल्स आर एक्सपेंसिव? थिंक अगेन, because right now the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now, because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. selfdrive.ae, your car, your price, your way.
3: Hi, I'm Neha. Honestly, मुझे ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करने में हमेशा थोड़ी हेजिटेशन होती है। मेरा कंसर्न था क्या मुझे करेक्ट वैल्यू मिलेगा, कहीं हिडन डिडक्शंस तो नहीं होंगे। मैंने तनिष्क ट्राई किया, प्योरिटी चेक हुई एंड एवरीथिंग वाज एक्सप्लेन्ड। नो हिडन चार्जेस, नो लास्ट मिनट सरप्राइजेस। आई गॉट 20 दिरहम्स एक्स्ट्रा पर ग्राम ऑन एक्सचेंज ऑफ माई ओल्ड गोल्ड, और मैंने अपने लिए ब्यूटीफुल डायमंड ज्वेलरी भी खरीदी।
4: विजिट योर नियरेस्ट तनिष्क स्टोर टुडे।
5: मार्केट्स डोंट स्लीप, सो व्हाई शुड यू? इंट्रोड्यूसिंग ट्रेड 24/7, द मॉडर्न वे टू ट्रेड ग्लोबल मार्केट्स एनीटाइम एनीवेयर, फ्रॉम प्रेशियस मेटल्स एंड कमोडिटीज टू ग्लोबल इंडाइसेस, ऑल इन वन पावरफुल प्लेटफॉर्म। With instant deposits and withdrawals, your money moves as fast as you do, backed by Acuity-powered signals, so you're always one step ahead of the market. Trade 24/7. Trade smarter. Trade better. This Eid, the celebration gets bigger at GWM. Join the GWM Carnival from 28th to 30th May at the all-new GWM Sheikh Zayed Road Showroom from 4 p.m. to 8 p.m. Discover cash discounts, exciting referral rewards and win 10 grams of gold. Come with your family, explore the latest GWM SUVs and pickups and enjoy 3 evenings packed with excitement and exclusive offers. 3 days, 1 destination, endless excitement. Celebrate Eid the GWM way. Visit the new Sheikh Zayed Road showroom from 28th to 30th May from 4 p.m. to 8 p.m. or call 800-GWM-UAE to know more. GWM, go with more. Terms and conditions apply.
1: Big 106.2. That's My Song by E-And.

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उड़ी बाबा।
2: 106.2 The Beat of Bollywood.
3: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
4: Markets don't sleep, so why should you? Introducing Trade 24/7, the modern way to trade global markets anytime, anywhere. From precious metals and commodities to global indices, all in one powerful platform. With instant deposits and withdrawals, your money moves as fast as you do, backed by AQUIT-powered signals, so you're always one step ahead of the market. Trade 24/7. Trade smarter, trade better.
5: Hi, I'm Neha. Honestly, मुझे ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करने में हमेशा थोड़ी हेजिटेशन होती है. मेरा कंसर्न था क्या मुझे करेक्ट वैल्यू मिलेगा, कहीं हिडन डिडक्शंस तो नहीं होंगे. मैंने तनिष्क ट्राई किया, प्योरिटी चेक हुई एंड एवरीथिंग वाज एक्सप्लेन्ड. नो हिडन चार्जेस, नो लास्ट मिनट सरप्राइजेस. आई गॉट 20 दिरहम्स एक्स्ट्रा पर ग्राम ऑन एक्सचेंज ऑफ माई ओल्ड गोल्ड. और मैंने अपने लिए ब्यूटीफुल डायमंड ज्वेलरी भी खरीदी.
6: विजिट योर नियरेस्ट तनिष्क स्टोर टुडे.
7: An experience shaped around you with Fly Dubai. Different paths, different dreams, all shaped by the same moment. This is where every journey becomes a story worth telling. A story that begins with Fly Dubai.
8: Again? The car's not starting.
9: I think the battery's gone.
8: Then stop guessing. Get Solite batteries.
9: What's special?
8: Premium Korean tech. Zero maintenance. Perfect for this heat.
9: Wow, that's smooth. Where do I find it?
8: Auto Pro Fast Track Dialer Battery Auto Studio. Any major auto store. Solite batteries. Power you can trust. Distributed by AMAP Group.
10: Hey, jaldi hata tera khatana. Jal hata. Arey jaldi hata.
2: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
11: Morning, let's start with capital Abu Dhabi. यहाँ पर आपको हल्का बुल्का ट्रैफिक मिलेगा E30 पर मुसफ़ा इंडस्ट्रियल के आसपास. Then there is a bit of congestion at Abu Dhabi University की सड़क पर भी. And then Rabdan में आपको मिलेगी 3 से 4 मिनट की देर. Also Sector 13 Khalifa City पे आपको 2-3 मिनट की देर मिली तो मिली. Then there is Dubai Sharjah जहाँ पर DLC Dubai South heading north a bit of congestion. And then 311 पर अचानक a bit of traffic you'll find going towards Silicon Oasis. In case you spot something, give me a call. 800-106.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: 106.2. The beat of Bollywood.
1: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Hi, I'm Neha. Honestly, मुझे old gold exchange करने में हमेशा थोड़ी hesitation होती है. मेरा concern था, क्या मुझे correct value मिलेगा? कहीं hidden deductions तो नहीं होंगे? मैंने Tanishq try किया. Purity check हुई and everything was explained. No hidden charges, no last minute surprises. I got 20 dirhams extra per gram on exchange of my old gold. और मैंने अपने लिए beautiful diamond jewelry भी खरीदी.
4: Visit your nearest Tanishq store today.
5: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल, जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार, अपना फ्यूचर.
6: Now listen to your favorite songs on repeat without any interruption. Download the Big Fan app for unlimited song selection. Available on iOS and Android. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.com.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: और ऐप यूज करने पर पाइए गोल चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गोल चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2

0: ED Hair Color. Covering the changes in the world and covering changes in your hair right now. This is Fan Network News from the BBC.
1: BBC News with Moira Alderson. Australia is suing the US firm 3M over the use of forever chemicals which don't naturally break down in firefighting foam used on military bases. Large quantities of soil have been contaminated. As Bolivia continues to be rocked by anti-government protests, the veteran former president, Evo Morales, said people are rebelling against a government that's utterly submissive to the US. The current president, Rodrigo Paz, has warned that blockades made by protesters have left Bolivia at breaking point. A verdict is due shortly in the trial of an Austrian man who's admitted plotting a jihadist attack on a Taylor Swift concert in Vienna 2 years ago. The man, named as Beran A, also pleaded guilty to being part of a terrorist organisation but denied other charges. That's the latest world news from the BBC.
0: Fan Network News from the BBC. Henna Speedy Hair Colour. Your quick fix solution for changing back the lost colours of your hair in just 7 minutes. Big 106.2.
2: जब वो चले तो सब देखते रह जाए और जब वो रुके तो वक्त बच जाए और वो जब हंसेगी उसके सामने झुक के अपनी बाहें फैला के कहूंगा I love you.
0: When the clock strikes sass, she walks in. Fashion, films and fun. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
3: हाँ जी, गुड मॉर्निंग. जोहरा के साथ आप रेडियो ऑन बिग 106.2 अ पार्ट ऑफ फन एशिया नेटवर्क. ईद मुबारक यार, लंबी लंबी छुट्टियां चल रही हैं सबकी. एंड इफ यू स्टिल चूज टू कीप अस कंपनी ऑन द शो, गिव मी कंपनी, देन आई थिंक आई हैव टू बी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यू नो ग्रेटफुल टू यू एंड ऑल्सो थैंकफुल एंड ऑल्सो मेक श्योर कि मैं आपको उसी ट्रीटमेंट के साथ आपके लिए सारे सारे प्यारे प्यारे गाने चलाऊँ एंड मेकिंग श्योर यू आर वन ऑफ माई वी आई पीज विच यू डेफिनेटली आर. बट दिस आर आई वॉन्ट टॉक अबाउट फैशन. देखो फैशन के लिए मतलब मैं तो हमेशा ही आई एम अप फॉर इट. एनीथिंग टू टॉक अबाउट फैशन, एनीथिंग टू डू विद फैशन, यू नो माई इंटरेस्ट इज ऑलवेज इन दैट. बट ईद जब भी आती है ना, देर इज वन क्वेश्चन दैट ऑलवेज रन्स थ्रू माई माइंड, विच इज ईद आउटफिट प्रेशर. क्योंकि आई फील लाइक जितना हम खुद को भी नहीं प्रेशर कर रहे होते ना, उतना बाकी लोगों का प्रेशर हमको खाया जा रहा होता है. इसके बारे में हम बात करेंगे. एंड इफ़ यू टू हैव बीन फीलिंग द प्रेशर ईद पे, स्पेशली आउटफिट को लेके, देन दैट इज समथिंग वी डेफिनेटली गोना टॉक अबाउट. दिस आर ऑन द बिग मिक्स विद मी ज़ोहरा. गुड मॉर्निंग.

0: Get car insurance from insurancemarket.ae. Call or WhatsApp 800-ALFRED. Insurancemarket.ae.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: यार ये पीयर प्रेशर ना किसी दिन बहुत हमें मुसीबत में डलवाएगा, बिकॉज आई फील लाइक यार वी लेट इट गेट टू अस, यू नो वी शुडंट बी लेटिंग इट गेट टू अस एंड वी शुडंट इन एनी केस एनी काइंड ऑफ प्रेशर, यू नो इज नॉट गुड. हमें अपना खुद का ये डिसाइड कर लेना चाहिए, खुद के डिसीजंस खुद लेने चाहिए. वी शुड नॉट बी लेटिंग अदर पीपल्स ओपिनियंस और अदर पीपल्स थिंकिंग टू गेट इन द वे ऑफ वॉट वी वॉन्ट टू डू. ओके, मैं बात बहुत घुमा घुमा के बोल रही हूँ फिलहाल. आई वॉन्ट टॉक अबाउट ईद आउटफिट प्रेशर, ठीक है, क्योंकि आई फील लाइक जब भी ईद around the corner, yes, हमारा खुद भी दिल करता है to dress up, to wear something new, to wear a nice outfit, click pictures and all of that. But कभी कभी हमारा दिल नहीं भी कर रहा होता है. कभी कभी we just want to wear the most simplest outfit, basic एक कुर्ती पहन लो, ये कर लो, घर पे बैठ जाओ. But because वो pressure हम पे होता है, लोग expect कर रहे होते हैं, अरे ईद की पिक्चर भेजना यार, क्या पहना तूने, दिखाना, फोटो डाल, ये नहीं डाला, ये नहीं किया, रील नहीं बनाई. उस प्रेशर के चक्कर में वी एंड अप प्रेशरिंग ourselves कि नहीं, हमें जाना ही होगा, नए कपड़े लेने ही होंगे, रील बनानी ही होगी. एंड आई थिंक That is just unnecessary, right? क्योंकि उसमें कोई फन भी नहीं है, ना उसमें आपका मजा है, ना उसमें आपका दिल है वो करने का genuinely. You're just doing it for the sake of it. तो I feel like I'm that kind of a person. I do not like this pressure. I do not like getting the pressure, like you know, अपने सर पे. मुझे वो नहीं चाहिए. Even though I used to be the kind of person कि initially ऐसे लगता था, you know, social media जब अचानक से when it started picking up, तो कभी कभी ऐसे लगता था कि यार नहीं नहीं, अरे रील बनानी होगी, लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मुझसे कि ये ऐसे. कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, कोई नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा. ये आप खुद के साथ कर रहे हो, ये आप प्रेशर खुद पे डाल रहे हो. सो स्टॉप प्रेशरिंग योरसेल्फ इफ यू टू आर गोइंग थ्रू दिस ईद आउटफिट प्रेशर राइट नाउ कि यार अभी ईद आ गई, नए कपड़े नहीं लिए, ये नहीं लिया. कोई बात नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने भी इस ईद नए कपड़े नहीं लिए. आई ऑल्सो मेड श्योर कि मैं रिसाइकिल करूँ, यू नो, एंड आई रीयूटिलाइज रिक्यूरेट माई आउटफिट्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन दिस ईद एज वेल. सो डू नॉट प्रेशर योरसेल्फ इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ प्रेशर फ्रॉम योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, व्हाटएवर इट इज. डू what your heart tells you to do.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Drive home a brand new Jetor with zero VAT and EMIs starting from just 966 dirhams per month. Buy now and pay after 6 months. T's and C's apply.
2: Early in the morning. The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Jetor UAE, part of Elite Group Holding, and Fly Dubai. Now listen to your favorite songs on repeat without any interruption. Download the Big Fan app for unlimited song selection. Available on iOS and Android.
4: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
5: बहुत। मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
1: हाँ जी, फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द ईयर आपने सुना, ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae, जिसके थ्रू यू गेट द मोस्ट अफोर्डेबल कार रेंटल इन द यूएई राइट नाउ. यस, दैट्स डेफिनेटली गोना पुट अ स्माइल टू योर फेस. स्टार्टिंग एट जस्ट 899 दिरहम्स अ मंथ, ये प्राइस सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है इन द यूएई. नो ओनरशिप, नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस दैट यू हैव टू यू नो गो थ्रू. सो जस्ट पिक योर कार अप एंड गेट ड्राइविंग. दिस इज selfdrive.ae. आप सर्च भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो ऐप को, सेल्फ ड्राइव, योर कार, योर प्राइस, योर वे.

साला पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।

0: साला पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Dubai, get ready for the biggest Punjabi entertainment night of the year. Humble Motion Pictures presents Carry On Jatta 4. Meet the star cast of the highly anticipated family comedy Carry On Jatta 4, featuring Gippy Garewal, Sargun Mehta, Binu Dillon, and Karamjeet Anmol, live in Dubai on 29th May. Catch them at Global Village main stage from 7 p.m. onwards and join the exclusive after party at Opus Club Dubai from 11 p.m. onwards. Powered by Royal Skin Cosmetic Clinic, Celebrity Nation, Ladies Fusion and Big 106.2. Tour organized by Dream Advertising and Big Bash Squad.
3: Hi, I'm Neha. Honestly, मुझे old gold exchange करने में हमेशा थोड़ी hesitation होती है. मेरा concern था, क्या मुझे correct value मिलेगा? कहीं hidden deductions तो नहीं होंगे? मैंने Tanishq try किया. Purity check हुई and everything was explained. No hidden charges, no last minute surprises. I got 20 dirhams extra per gram on exchange of my old gold. Aur maine apne liye beautiful diamond jewelry bhi khareedi.
4: Visit your nearest Tanishq store today.
5: Hey, jaldi hata tera khada ra. Chal hata.
6: Ha ha.
5: Are jaldi hata chinda.
6: Ha ha.
7: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: ट्रैफिक हाल फिलहाल लाइट ट्रैफिक आपको मिल जाएगा अगर आप है E44 रासल खोर रोड पे अलखेल जाते हुए आपको मिलेगा वहां पे लाइट ट्रैफिक अबाउट 5 to 7 मिनट डिले ऑन दैट रोड. उसके अलावा E311 शेख मोहम्मद बिन जायद रोड लाइट ट्रैफिक आपको वहां पर भी मिल सकता है हेडिंग टुवर्ड्स शारजा. D89 एयरपोर्ट स्ट्रीट शोइंग बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक. दिस इज अराउंड द स्काई कार्गो वाला जंक्शन. उसके अलावा आपको मिल जाएगा थोड़ा सा लाइट ट्रैफिक इफ यू आर अराउंड अल हुदैबा एरिया. D77 कुवैत स्ट्रीट पे भी मोटर ट्रैफिक है 6 to 7 मिनट का डिले. एनी अदर अपडेट यू कैन लेट अस नो 4305.
7: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। 106.2

0: Get car insurance from insurancemarket.ae. Call or WhatsApp 800 Alfred. Insurancemarket.ae.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: हाँ जी, जोहरा के साथ हूँ आप ऑन द बिग मिक्स। फिलहाल मैं बात कर रही थी कि यार ये जो लोग बोलते हैं ना लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, रोड ट्रिप करेंगे, बहुत मजा आ रहा है, ये हमारे बॉस मेरे सामने खड़े हुए हैं, मुझे इनसे पूछना है। He's been very honest.
3: हालो, हालो, हालो, हालो. We've got this pseudo mic.
2: छुट्टी हमारे सर चढ़ गई है।
3: Okay, what are you saying about long drive?
2: No, yeah, long drive. Okay, number one.
3: Yeah.
2: Do you enjoy long drives?
3: I like long drive, yes.
2: Road trips?
3: Yeah, road trips and long drive में फर्क। Like,
2: say,
3: अगर मेरे को तू खावनीज के last exit पे ले जाएगी, तो मेरे लिए वो long drive है।
2: I'm talking about a road trip, for example, a road trip to Abu Dhabi, 2 घंटे का सफर, 2.5 घंटे का सफर।
3: हाँ, if you've got
2: Oman जा रहे हो आप,
3: if you've got company,
2: if you,
3: yeah, yeah, if you've got company, why not? Yeah, yeah, yeah. You just need to do pit stops in between, to cafes and cafeterias, have your chai and, you know, keep gossiping.
2: So, I'll tell you something, ठीक है? Road trip पे जब जाते हैं, there are many different types of people, है ना? एक the driver, बेचारा जिस पे responsibility पूरी होती है।
3: नहीं, तो दूसरा भी तो
2: होता है। बदलते होते हैं, but most of the time एक ही बंदा कर रहा होता है, because उसको confidence होता है।
3: नहीं, क्योंकि उसको अपनी गाड़ी प्यारी होती है।
2: वो भी होता है, हाँ, comfort भी होता है। दूसरा DJ होता है। म्यूजिक चला रहा होता है, यू नो, यू हैव, यू नीड टू हैव अ गुड डीजे,
3: उसमें तो बहुत कलेश होते हैं। एनीवे,
2: तीसरा द ग्राम पर्सन, यू नो, पिक्चरें लेना, स्टोरियां डालना, वन पर्सन। आई एम ऑल, आई ड्राइव आल्सो, आई टेक पिक्चर्स आल्सो, आई एम द डीजे आल्सो।
3: सो देन आई थिंक यू शुड स्पीक टू आरटीए फर्स्ट।
2: नंबर 4 आर द स्लीपर्स, जो बैठेंगे 5 मिनट आपसे हा हा ही बहुत करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, विद इन 5 मिनट्स दे हैव डोज्ड ऑफ।
3: आई थिंक दैट कुड बी मी।
2: So then you, what are you saying you enjoy road trips for? You're the worst person to go on road trips.
3: Yeah, someone's driving me around, I'm driving, I'm being with the company, I'm listening to passive gossips.
2: But you are, then you're a silent partner. In sleep. You are a silent partner, your contribution is zero.
3: No, I'm contributing.
2: How are you contributing?
3: Sometimes a punch enough is a good contribution. You wake up all of a sudden and tumne kuch passive
2: punch line maar ke phir so gaye.
3: Phir so gaye.
2: I never want to go on a road trip. Never.
3: No, man.
2: तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो pretend करते हैं कि हमें road trip बहुत पसंद है।
3: अच्छा, but when was the last road trip that you took?
2: I think it was
3: from your house to work to office is your road trip anyway.
2: No. No, I think recently, last Eid के around, I'd gone to Fujairah.
3: Fujairah.
2: तो वहाँ पे मेरी एक 1.5 घंटे की drive थी। And I told you, there's this place in Fujairah जहाँ पे पकोड़े मिलते हैं।
3: Yeah.
2: Very nice. छोटा सा cafeteria है, but the best pakoda and the best chai.
3: But did you like that road trip?
2: Yeah, I enjoy road trips because I'm the kind of person. So I'm an entertainer. मेरी family मेरे साथ road trip पे इसीलिए जाना पसंद करती है क्योंकि उनको पता है कि कोई bore नहीं होगा क्योंकि मैं entertain कर रही हूँ। गाने तो चलो चल रही होते हैं, but I'm always someone who comes up with random games. चलो ये खेलेंगे, वो खेलेंगे, तो एक घंटा उसी में निकल जाता
3: है।
2: So when I say I enjoy road trips, I genuinely do. But I know a lot of people say, हाँ, बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, कुछ नहीं कर रहे होते।
3: But that's a good take. Why don't you ask everyone?
2: Yeah, I want to ask that only. कि road trips का, are you someone who pretends to like road trips just for the sake of the gram, or are you someone who genuinely like me enjoys road trips? 800-1062. While you're on that road trip of yours, give me a call. Let me know.

0: ए बुड्ढे, ए बुड्ढे।
1: नमस्ते।
0: पहले आप वादा कीजिए आप गुस्सा नहीं होंगे।
1: भला मैं क्यों गुस्सा होने लगा, आप बात बताइए।
0: मैं बात तो बता देती लेकिन मुझे डर है कि आपको गुस्सा आ जाएगा।
1: नहीं नहीं नहीं, आप तो खाम खा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
0: गुस्सा आ जाएगा, सब आ रहा है, गुस्सा आ जाएगा, आ रहा है। देखिए
1: ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: This Eid, the celebration gets bigger at GWM. Join the GWM Carnival from 28th to 30th May at the all-new GWM Sheikh Zayed Road Showroom from 4 p.m. to 8 p.m. Discover cash discounts, exciting referral rewards and win 10 grams of gold. Come with your family, explore the latest GWM SUVs and pickups and enjoy 3 evenings packed with excitement and exclusive offers. 3 days, 1 destination, endless excitement. Celebrate Eid the GWM way. Visit the new Sheikh Zayed Road showroom from 28th to 30th May from 4 p.m. to 8 p.m. or call 800-GWM-UAE to know more. GWM, go with more. Terms and conditions apply.
4: Now listen to your favorite songs on repeat without any interruption. Download the Big Fan app for unlimited song selection. Available on iOS and Android.
5: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो।
0: बहुत। मैं अपनी फेवरेट हूँ।
4: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Mix, brought to you by InsuranceMarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247. Big Traffic, brought to you by SelfDrive.ae.
1: ट्रैफिक हाल फिलहाल लाइट ट्रैफिक आपको मिल जाएगा अगर आप है E44 रासलखोर रोड पे अलखेल जाते हुए आपको मिलेगा वहाँ पे लाइट ट्रैफिक अबाउट अ 5 to 7 मिनट डिले ऑन दैट रोड. उसके अलावा E311 शेख मोहम्मद बिन जायद रोड लाइट ट्रैफिक आपको वहाँ पर भी मिल सकता है हेडिंग टुवर्ड्स शारजा. D89 एयरपोर्ट स्ट्रीट शोइंग बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक. दिस इज अराउंड द स्काई कार्गो वाला जंक्शन. उसके अलावा आपको मिल जाएगा थोड़ा सा लाइट ट्रैफिक इफ यू आर अराउंड अल हुदैबा एरिया. D77 कुवैत स्ट्रीट पे भी मॉडरेट ट्रैफिक है 6 से 7 मिनट का डिले. एनी अदर अपडेट यू कैन लेट अस नो 4305
0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: 93.2 The Beat of Bollywood.
1: हां जी, जोहरा के साथ राइट हैंड बेक 106.2 वी आर पार्ट ऑफ फन एशिया नेटवर्क. दिस इज द बिग मिक्स. द शो इज ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae दैट ऑफर्स यू बिल्कुल ही सिंपल, फास्ट और स्ट्रेस फ्री कार इंश्योरेंस. आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है वहां पे, बिकॉज अल्फ्रेड इज ऑलवेज गोइंग टू मेक श्योर दैट देयर टू सर्व यू एंड यू ऑल्सो गेट टू सेव अप टू 30% बाय कंपेयरिंग. सो ऑल यू हैव गॉट टू डू इज कॉल देम. आप उन्हें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. द नंबर इज 800 अल्फ्रेड. दे आर अवेलेबल 24/7 एट योर सर्विस. आई एम टॉकिंग अबाउट insurancemarket.ae.

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए GoChat Coins. इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, VIP सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए GoChat ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही. 106.2

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
1: हाँ जी, जोहरा के साथ हो राइट हैं बिग 106.2, वी आर पार्ट ऑफ फनी शेयर नेटवर्क. दिस इज द बिग मिक्स. द शो इज ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae दैट ऑफर्स यू बिल्कुल ही सिंपल, फास्ट और स्ट्रेस फ्री कार इंश्योरेंस. आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है वहां पे, बिकॉज अल्फ्रेड इज ऑलवेज गोइंग टू मेक श्योर दैट देयर टू सर्व यू, एंड यू ऑल्सो गेट टू सेव अप टू 30% बाय कंपेयरिंग. सो ऑल यू हैव गॉट टू डू इज कॉल देम. आप उन्हें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. द नंबर इज 800 अल्फ्रेड. दे आर अवेलेबल 24/7 एट योर सर्विस. आई एम टॉकिंग अबाउट insurancemarket.ae.

0: 92.2 The Beat of Bollywood. The Beat Mix, brought to you by insurancemarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
1: ट्रैफिक हाल फिलहाल लाइट ट्रैफिक आपको मिल जाएगा अगर आप है E44 रासल खोर रोड पे अलखेल जाते हुए आपको मिलने का वहां पे लाइट ट्रैफिक अबाउट 5 to 7 minute डिले ऑन दैट रोड. उसके अलावा E311 शेख मोहम्मद बिन जायद रोड लाइट ट्रैफिक आपको वहां पर भी मिल सकता है हेडिंग टुवर्ड्स शारजा. D89 एयरपोर्ट स्ट्रीट इज शोइंग बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक. दिस इज अराउंड द स्काई कार्गो वाला जंक्शन. उसके अलावा आपको मिल जाएगा थोड़ा सा लाइट ट्रैफिक इफ यू आर अराउंड अल हुदैबा एरिया. D77 कुवैत स्ट्रीट पे भी मोटर ट्रैफिक है 6 to 7 minute का डिले. एनी अदर अपडेट यू कैन लेट अस नो 4305 पे.
0: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: Call or WhatsApp 800-ALFRED. Renewing your registration? Don't forget your insurance first. InsuranceMarket.ae.
1: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
2: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ.
3: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

ब्यूटीफुल गाना यार, मधुर शर्मा की आवाज ऑन द बिग मिक्स ऑन दैट ब्यूटीफुल नोट. इट्स माय टाइम टू लीव द स्टूडियोज एंड लीव यू विद उज्जवल, हु इज गोना बी कीप यू कंपनी अप नेक्स्ट विद द बिग लाइफ. मेरी आवाज, मेरा अंदाज अगर आपको पसंद आया हो, इंस्टाग्राम पे डोंट फॉरगेट टू फॉलो ज़ोहरा अमीन. ऑल्सो मेक श्योर यू फॉलोइंग अस ऑन 106.2 बिग एफएम. वहां पे इतना फन कॉन्टेंट डालते हैं हम आपके लिए जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि प्रेजेंटर्स ये कर रहे होते हैं ऑफ एयर. सो मेक श्योर टू गो फॉलो अस ओवर देयर. आई विल नाउ सी यू टुमारो 10 से 1 के बीच. अंटिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड टू बिग 106.2 The Beat of Bollywood.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उड़ी बाबा।
2: 106.2 The Beat of Bollywood. Such a heartthrob.

0: इंटेंसिटी ऑफ बोथ दीज ट्रैक्स, जेम्स की आवाज में गाना सुना, ऊपर आपने सुना राघव चैतन्य की आवाज में गाना बिग 106.2 पे. आप सुन रहे हैं द बिग लाइफ,
1: द बिग लाइफ विद उज्जवल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: वेल, कभी कभार हमारी फ्रेमिंग इतनी खराब हो जाती है हमारे शब्दों की कि हमें चैट जीपीटी की जरूरत पड़ जाती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए भी. बताओ हम कौन से युग में जी रहे हैं जहां पर हम आपको अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते. वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ लीव फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन दैट आई स्टार्टेड विद ऑफ रीकनेक्टिंग बैक विद पीपल. प्रॉब्ली इट्स बीन मंथ्स एंड मंथ्स ऑफ हैविंग नॉट स्पोकन विद ईच अदर. और ऐसा नहीं है कि हमेशा बर्न द ब्रिजेस वाली कॉन्वर्सेशन होती है कि वो खत्म हो गई और उसके बाद हमने बात नहीं करनी. बहुत बड़ी ऐसा होता है कि आप अपनी अपनी लाइफ में इतने मशरूफ हो जाते हो कि आपको याद ही नहीं रहता कि यार उनसे भी बात करनी है, किसी दूसरे बंदे से भी बात करनी है, या कितना टाइम हो गया यार उसको मैंने मैसेज नहीं किया, या हम किसी कॉमन पार्टी पे नहीं मिले, या हम क्या किसी कॉमन गैदरिंग पे नहीं मिले, एंड उसने नहीं मेरे को मैसेज किया, मैंने भी उसको मैसेज नहीं किया. और बस इसी दोनों के कश्मकश में वो जो रिश्ता है वो छूट जाता है आपके हाथ से. बट यू नो, ईद इज़ अ फैबुलस टाइम ऑफ रीकनेक्टिंग बैक विद पीपल. जस्ट अ सिंपल व्हाट्सएप टेक्स्ट, जस्ट अ सिंपल मैसेज, जस्ट अ सिंपल फोन कॉल, तो चलो बहुत बड़ी बात है अगर रिलेशनशिप थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया है. लेकिन अगर यू नो ये छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे DM, basic things, you know, if you can do that, then who knows, that person will be pleasantly surprised and he just gives you a call back. You know, this country is all about networking. It is all about speaking with people. Like-minded hai ya unlike-minded hai? Ek taraf hum ye kehte hain ki brush off people who are not required in your circle. You know, you got to just shoo them away. The other thing is, maybe that person was valid enough to be a part of your group, but during the course of the time, you left that person. Maybe this is the time that you need to speak to that person or drop in that WhatsApp yet again. Mithun Arijit Singh ki awaaz, the track is Dhun. Aapke saath until 5 o'clock. This is The Big Life.

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
1: Fast track song of the hour up is now brought to you by SelfDrive, which will connect you with us and bring the big life.
0: The big life with Ujjwal on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: The WhatsApp marathon is on. कौन पहले भेजेगा ईद मुबारक? Actually, दो तीन दिन से चल रहा है और ये चलता रहेगा मेरे ख्याल से शुक्रवार तक जब तक हमें ये रियलाइज नहीं होगा अरे छुट्टियां खत्म हो गई क्या करेंगे भैया कहाँ जाएंगे भैया. वेरी कूल जिफ्स बाय द वे इस वक्त व्हाट्सएप पे आप देखिएगा ईद मुबारक के बहुत कूल जिफ्स हैं. यू कैन डाउनलोड देम एंड यू कैन सेंड अक्रॉस दोज जिफ्स एज वेल. बट मुझे ऐसा लगता है कि फॉरवर्ड मैसेजेस में ना कोई दम नहीं होता. मतलब पीपल इग्नोर इट. यू ऑल्सो इग्नोर इट. वी ऑल नो दैट. यू नो वी ऑल इग्नोर फॉरवर्ड मैसेजेस. हाँ ये अगर आपने पर्सनलाइज कर दिया ईद मुबारक विशिंग यू एंड योर फैमिली अपने खुद का नाम लिख दिया. I know that you have to send it across to tons of people in your phone book, but you gotta do it. You know, sometimes you gotta do it. Make it personalized, especially for all the business entrepreneurs. Don't do that. Don't send like send to all types kind of a thing, you know. Figure out something interesting, you know, how you can make it more interesting. And especially with the current situation where everyone really needs each other backing up, you know. A little kind gesture and an emotional message could really change a lot of people's perspective about you particularly. Think about it. What could be that message? Take it away. Aapke saath until 5 o'clock. Some nice songs setting up the mood of the afternoon time on The Big Life. Big 106.2 Paver, a part of Fun Asia Network.

बिग 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ हैं, आप सुन रहे हैं द बिग लाइफ। वेल, आप सुनते हैं, आप देखते हैं और आप हंस हंस के यू नो यू फील लाइक ओ माय गॉड, अलग ही पंजाबी माहौल है। कैरी ऑन जट्टा दे नाल 1 तुसी देखिए, 2 तुसी देखिए, 3 तुसी देखिए, हुन जेड़ा 4th एडिशन है ऑफ कैरी ऑन जट्टा दैट इज कमिंग सून। यस, एंड यू गेट रेडी टू मीट द ब्लॉकबस्टर स्टार ऑफ कैरी ऑन जट्टा Live in Dubai on 29th of May 2026, Gippy Grewal se aap mulaqat kar sakte hain, Sargun Mehta, Binu Tillo and Karamjeet Anmol. You can catch them live at Global Village main stage on 29th of May from 7 PM onwards. And jo celebration night continues with the official after party at Opus Club Dubai from 11 PM onwards. Event partners, Royal Skin Cosmetic Clinic, Celebrity Nation, Ladies Fusion, Cats Entertainment and Big 106.2. Tour organized by Dream Advertising and Big Bash Squad. Do not miss this madness.

0: बस यही गाना सुनता रहूं लूप पे। इतना प्यारा गाना है, फिल्म इतनी कमाल है, लापता लेडीज। बिग 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ आप सुन रहे हैं द बिग लाइफ।
1: द बिग लाइफ विद उज्जवल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: अच्छा, तो हम कहाँ पे थे? हम थे प्लेट गिनने पे। ना मेरी मम्मी बड़ा पर्सनली ले लेती हैं, अगर आप रोटी गिनते हो या फिर आप प्लेटें गिनते हो या आपने चावल कितनी बारी ले लिए। बट बहुत सारे घरों में ये नॉर्मलाइज्ड है ना, ऐसा नहीं है कि आपको गिनना ही नहीं चाहिए। मतलब आप खा ही जा रहे हो, जैसे वली में पे आए हो, किसी के भंडारा चल रहा है कहीं भी, तो हमें रोक लगानी पड़ती है अपनी थालच पे, अपनी जुबान पे। बट ये ईद के दौरान ना ऐसा होता नहीं है जनरली। बट माई आइडिया इज़ टू यू नो डू अ पोर्शन कंट्रोलिंग, है ना। मीठा वैसे हम इतना खाएंगे, एक दूसरों के घरों पे जाएंगे, पार्टियां करेंगे, फिर वहाँ पे भी खाएंगे, फिर स्टार्टर भी खाएंगे, मेन कोर्स भी खाएंगे, डिजर्ट भी खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, तो पोर्शन कंट्रोल की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, है ना। और अगर आपने मेहनत करी है इतने टाइम से, जिम में आप वर्कआउट कर रहे हो और आप अपना कैलोरी डेफिसिट मेंटेन कर रहे हो, यू नो कॉन्स्टेंटली फिगरिंग आउट ओके व्हाट शुड बी देयर, यू नो बहुत आप मेटिकुलसली अकाउंट कर रहे हो अपने कैलोरीज, एंड दीज 4-5 डेज कमिंग दे जस्ट रूइन इट फॉर यू। डोंट लेट दैट हैपन टू यू। आई नो लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली अब्सटेन फ्रॉम गोइंग टू दीज प्लेसेस एट ऑल, यू नो, बिकॉज अगर उनका मन कच्चा टाइप है ना, मेरे जैसा नाजुक टाइप का, तो मतलब मैं जाके, मतलब मैं कहूँगा कि देख ही जाएगी, खा लूँगा मैं। अगर मैंने 40-50 दिन तपस्या भी करी है ना, खाना रोक के खाने की, हालांकि आई एम अ बिग फूडी, आई लव ईटिंग फूड बिकॉज दैट मेक्स मी हैप्पी, बट यू नो इफ यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ नथिंग लाइक दैट। जहाँ पर लोग 4 कबाब खा रहे हैं, आप 1 कबाब खाइए। जहाँ पर लोग 2 प्लेट बिरयानी भर भर के ले रहे हैं, आप थोड़ा सा पोर्शन लीजिए, साथ में रायता ले लीजिए। ईट अ लॉट ऑफ सैलड, रफेज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट माई टिप्स। एंड प्लेटें गिनना मेरे को लगता है कि सही भी है, आजकल के टाइम पे हमें गिन लेनी चाहिए प्लेटें। टेक इट अवे आपके साथ अंटिल 3, दिस इज द बिग लाइफ, बिग 106.2 पे, वी आर पार्ट ऑफ फन एशिया नेटवर्क।

0: समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्ज्वल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जानो।
1: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो।
2: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

बिग 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ हैं, आप सुन रहे हैं द बिग लाइफ। वेल, आप सुनते हैं, आप देखते हैं और आप हंस हंस के यू नो यू फील लाइक ओ माय गॉड, अलग ही पंजाबी माहौल है। कैरी ऑन जट्टा दे नाल 1 तुसी देखिए, 2 तुसी देखिए, 3 तुसी देखिए, हुन जेड़ा 4th एडिशन है ऑफ कैरी ऑन जट्टा दैट इज कमिंग सून। यस, एंड यू गेट रेडी टू मीट द ब्लॉकबस्टर स्टार ऑफ कैरी ऑन जट्टा लाइव इन दुबई ऑन 29th ऑफ मे 2026। गिप्पी ग्रेवाल से आप मुलाकात कर सकते हैं, सरगुन मेहता, बिनू टिल्लो एंड करमजीत अनमोल। यू कैन कैच देम लाइव एट ग्लोबल विलेज मेन स्टेज ऑन 29th ऑफ मे फ्रॉम 7 PM ऑनवर्ड्स। एंड जो सेलिब्रेशन है इट कंटिन्यूज विद द ऑफिशियल आफ्टर पार्टी एट ओपस क्लब दुबई फ्रॉम 11 PM ऑनवर्ड्स। इवेंट पार्टनर्स रॉयल स्किन कॉस्मेटिक क्लिनिक, सेलिब्रिटी नेशन, लेडीज फ्यूजन, कैट्स एंटरटेनमेंट एंड बिग 106.2। टूर ऑर्गेनाइज्ड बाय ड्रीम एडवर्टाइजिंग एंड बिग बैश Squad, do not miss this madness.

0: 90s रिवाइंड मैं कर रहा हूँ इस घंटे बिग 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ आप सुन रहे हैं द बिग लाइफ
1: द बिग लाइफ विद उज्जवल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड
0: बिग 106.2 पे वी आर पार्ट ऑफ फन एशिया नेटवर्क बहुत अच्छा लगता है ना सो टू गो बैक एंड सी सैफ अली खान इन अ यंग अवतार अब तो बिल्कुल अलग ही दिखते हैं सैफ अली खान व्हाट ही यूज्ड टू आपको मालूम है कौन सी फिल्म से गाना है मिस्टर आशिक से That's right. एक फिल्म आई थी मिस्टर आशिक जिसमें ट्विंकल खन्ना थी सैफ अली खान के साथ चार पांच फिल्में करी थी then ट्विंकल realized that this is not something that she was made for. शायद मामा थी लेकिन मैं नहीं कर सकती and then she said okay I don't want to do it. And then of course there was Deepak Tijori as well in this film. ये जो गाना है ये दीपक तिजोरी पे फिल्माया गया है and the film was an absolute tank out on the box office. Didn't do well at all. Nothing went well for the film apart from the songs. चाहे ये हो जो आपने सुना या फिर एक और गाना है इस फिल्म का मेरा चांद मुझे आया है नजर आ रात जरा थम थम के गुजर यू नो ऑल दी सॉन्ग्स आर ब्यूटीफुल द सॉन्ग्स आर वेरी नाइस बट अगेन द फिल्म वाज अ टोटल नो शो ऐसी कुछ फिल्मों के गाने मैं आपको सुना रहा हूँ जो फिल्म एकदम फ्लैट आउट थी लेकिन द सॉन्ग्स वर अमेजिंग नाउ हाउ कुड यू इवन थिंक ऑफ द फैक्ट ऑफ पुटिंग गोविंदा एंड ऐश्वर्या राय बच्चन मतलब एस्थेटिकली भी वो साथ में नहीं जाते आप एक्टिंग वाइज तो आप बात ही छोड़ दो है ना एक पिटीट खूबसूरत सी ऐश्वर्या एंड देन गोविंदा हुज गॉट ग्रेट एक्टिंग स्किल्स बट यू नो मिसमैच एटलीस्ट ऑन द स्क्रीन प्ले बट योर सॉन्ग वॉज एब्सोल्यूटली फुल हाउस Blockbuster gana, the track was Kahu Tu Zara Jhoom Lu, Kumar Shanu Ghevaz, rewinding all the 90s ke ye gane, Big 106.2 pe, Ujjwal

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
1: The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Jetour UAE, part of Elite Group Holding, and Fly Dubai.
3: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्जवल on the Big Life, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: विशाल ददलानी के बाद फ्रॉम द फिल्म दोस्तान आपने गाना सुना बिग 106.2 पे. आप सुन रहे हैं द बिग लाइफ,
1: द बिग लाइफ विद उज्जवल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: वेल, every time people go to Japan, like my friends have gone to Japan and it has always been on my bucket list. Ek to paisa bahut hai aur dusra bahut dur hai, that's why I always resist this place. But I hope that universe, are you listening to me, please send me to Japan one day, because the kind of etiquettes that these guys have, the culture that they have, wo mere ko dekhna hai ki actual mein asal baat hai ye log matlab aise hi print ke naam pe ya fir Instagram ke naam pe Japan ko famous kar rahe hain. सबसे पहली बात, इट इज ऑफिशियली द कंट्री ऑफ NO, नो हैज व्हाट यू नॉट अलाउड टू डू. नंबर वन, टिपिंग अलाउड नहीं है जापान में. टिपिंग इज इन नॉर्मल हियर. ग्रेट सर्विसेज इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, दे आर नॉट रिवॉर्डेड आउट ऑफ यू. दैट्स नंबर वन. नंबर टू, फोन कॉल्स ऑन ट्रेन्स आर नॉट अलाउड. हाय, क्या होगा हमारा. But yes, that's where the discipline comes in. Talking on the phone in a public transport is a big no. Silence is of the uttermost respect. Number three, no eating while walking. Eating on the go is seen as messy and uncultured. Stop, sit and eat properly. Number four, no bins, no litters, very few trash cans, yet one of the cleanest countries on earth. वो इसलिए चूंकि अगर आपके पास कोई कचरा है तो आपके सीधा जेब में जाता है. नो लाउड पब्लिक अफेक्शन, जिसमें हगिंग, किसिंग, लाउड वॉइसेस आर फ्राउंड अपॉन इन पब्लिक स्पेसेस एज वेल. नो जे वॉकिंग एट ऑल. पीपल वेट एट क्रॉसवॉक्स इवन व्हेन द रोड इज एम्प्टी, दे अबाइड बाय द सिग्नल्स. जूते आर नॉट अलाउड इनसाइड homes, temples, institutions, shoes off at the entrances. No talking in elevators, even friends go quiet, silence is the norm. And most importantly, when you visit Japan, it is the place which teaches you a lot in terms of what moral science classes are. हालांकि मुझे ऐसा लगता है इन सब चीज़ों को पढ़कर कि it is a perfect place for introverts. What do you think of it? Stay logged on, Big 106.2 pe right now. A very extrovert song. The track is Tu Chahiye, Atif Aslam ki awaaz aapke saath until 5. Aap sun rahe the Big Live. Good afternoon. Actually, good evening now.

0: समझती क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्ज्वल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: दरख्वास्त सिर्फ आपसे इतनी है कि कोई वैलिडेशन मांगता नहीं है, लेकिन कभी कभार बख्श देनी चाहिए ऐसा ही। उज्जवल खन्ना के साथ आप सुन रहे हैं द बिग लाइफ। गुड इवनिंग टू यू।
1: द बिग लाइफ विद उज्जवल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: होममेकर्स एक ऐसी एक ऐसी कैटेगरी है, कैटेगरी है जिनको कभी भी वो टाइम वो स्पेस नहीं मिलता जो उनको चाहिए होता है। आपको लगता है कि जब हस्बैंड चले जाते हैं स्कूल, जब बच्चे चले जाते हैं कॉलेज, ऑफिसेज एंड वाइसी वर्सा, सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एंड इन फैक्ट आई केम अक्रॉस दिस पोस्ट व्हिच टॉक्स अबाउट एक औरत की मनोस्थिति, साइकोलॉजिकल मूव ऑफ दैट वुमन। एंड शी राइट्स, वैक्यूमिंग द लिविंग रूम बट सॉ द डिशेज सो आई फोल्डेड द

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जानो।
3: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता
2: कल हो ना हो।
0: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: You know, Desi Blink देखने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि एक्चुअल पैसा होता क्या है. 40 किलो सोना, रोल्स रॉयस, डिजाइनर बैग्स, एब्सोल्युटली नथिंग. बट ऑल्सो आई रियलाइज्ड वन थिंग कि ये सब बिजनेस वालों को ही जो है नसीब होता है. अगर आप सोच रहे हो कि 9 to 5 करते करते यू विल बी पार्ट ऑफ द देसी ब्लिंक क्राउड, आई थिंक यू एंड आई वर डिल्यूजनल. इट्स टाइम फॉर अस टू वेक अप. इफ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, देन अजमान फ्रीज ऑन अथॉरिटी ने इंट्रोड्यूस करा है द वन क्लिक बिजनेस लाइसेंस. अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल दोज हु विश टू ओपन देयर स्मॉल या मीडियम साइज एंटरप्राइज विद अ फी स्टार्टिंग from 5,555 dirhams. To get your business license, all you need is a business idea. That's it. Baki Ajman Frieson Authority will take care of your visa, your bank requirements. It's a very quick, completely digitized process. TNCs do apply. To get your one-click license, any more information, definitely visit kjafz.ae.
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: थया।
1: अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है?
2: क्यों ही, तेरे बाप का माल है।
3: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता।
4: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening, ये है Big Thrill Mansi and आज realize नहीं होगा, जैसे ही कल दोपहर होगी ना तब realize होगा कि यार long weekend is almost over, but we've got some fantastic plans for you over the long weekend, especially tomorrow. Just head to Global Village, कुछ बहुत exciting होने वाला है, सारी details देती हूँ in just a bit. फिलहाल kickstarting this hour with two of my favorite songs, मतलब ये मेरे long drive वाले feels के गाने हैं. मैंने सोचा था कि मैं ये गाने सुनूंगी गाड़ी चलाते हुए, अभी मैं कुछ नहीं सुनती हूँ, मैं सिर्फ map की सुनती हूँ और अपने दिल की सुनती हूँ.

पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। Big 106.2

माहौल राइट ऑन बिग 106.2 मानसी कमिंग अप ब्रेक यू स्पार रेलवे मैन एंड मैं रिसेंटली इसे देखना शुरू किया है एंड आई एम हुक्ड. What a brilliant show and how did I miss this show? क्योंकि ये तो मेरी ही सिटी भोपाल के ऊपर है. Thoroughly enjoying it. So yeah, अगर आपने भी ऐसे कोई बहुत highly acclaimed and बहुत ही अच्छे shows miss कर दिए हैं तो I think long weekend is the perfect time to catch up on these shows. And if you haven't seen The Railway Men, I highly recommend you watch it.

0: ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है?
1: क्यों ही, तेरे बाप का माल है।
2: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता।
3: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Say whoa!

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। Big 106.2

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: हाँ जी, दिस इज द बिग थ्रिल. मजा तो बहुत आ रहा है कि लॉन्ग वीकेंड बस कुछ ही दिन बाकी हैं. इसके बाद अगला लॉन्ग वीकेंड कब आएगा मैं आपको बताती हूँ. आई थिंक एज कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हम वीकेंड टू वीकेंड जीते हैं, लॉन्ग वीकेंड का इंतजार करते हैं. फिलहाल सम फैंटास्टिक म्यूजिक. व्हाट आर यू डूइंग दिस लॉन्ग वीकेंड? वी'd लव टू नो. डू टैग अस इन योर स्टोरीज 106.2 बिग एफएम, दैट्स अस ऑन इंस्टाग्राम. फिलहाल स्टार्टिंग दिस आवर विद अ सॉन्ग दैट इज वेरी वेरी अप्रोप्रिएट. मतलब लॉन्ग वीकेंड तो है बट बहुत गर्मी है यार इस वीक.

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों ली? तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood. पत्थर है वो मुझे रोक टो

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: खिलाने पिलाने और जमीन बाहर पसारे बोल रही थी कि हाउस मार्क कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया के पैर का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।
1: बिग 106.2

0: insurancemarket.ae. Home insurance covers all things if there's a fire. Please get home insurance before it's too late. insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: You know, Desi Bling देखने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि एक्चुअल पैसा होता क्या है. 40 किलो सोना, रोल्स रॉयस, डिजाइनर बैग्स, एब्सोल्युटली नथिंग. बट ऑल्सो आई रियलाइज्ड वन थिंग कि ये सब बिजनेस वालों को ही जो है नसीब होता है. अगर आप सोच रहे हो कि 9 to 5 करते करते यू विल बी पार्ट ऑफ द देसी ब्लिंक क्राउड, आई थिंक यू एंड आई वर डिल्यूजनल. इट्स टाइम फॉर अस टू वेक अप. इफ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, देन अजमान फ्रीज एंड अथॉरिटी ने इंट्रोड्यूस करा है द वन क्लिक बिजनेस लाइसेंस. अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल दोज हु विश टू ओपन देयर स्मॉल या मीडियम साइज एंटरप्राइज विद अ फी स्टार्टिंग from 5,555 dirhams. To get your business license, all you need is a business idea. That's it. Baki Ajman Free Zone Authority will take care of your visa, your bank requirements. It's a very quick, completely digitized process. TNCs do apply. To get your one-click license, any more information, definitely visit kjafz.ae.

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।